0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी

0: इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

राजकुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

सिरे 9:30 बजे गजलां समाप्त फरमाओगी, 10:02 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश का। तांबक जलंधर पैंती प्रोग्राम 11:05 पेश किया जाएगा। 12:05 तो तुम सुनोगे प्रोग्राम वसते वीड़े। इस प्रोग्राम च उडारिया सिलसिले तहत सुश्री शाइना हुणां नाल कीती गलबात सुनोगे, नाल ही पेश करांगे सिलसिला साडा विरसा। फौजी वीरां लई प्रोग्राम 1:15 बजे होएगा। बाद दोपहर 2:30 बजे तुसीं सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम च अज तुसीं जीत लाल लहरी ते साथियां पासों माता दीआं भेटां सरवण करोगे। दूजी सभा च शाम 4:02 ते पंजाबी फिल्म संगीत दा प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। शाम 4:30 बजे तुसीं श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे सरवण करोगे प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होएगा शाम 6:30 बजे। इस प्रोग्राम च काम दीआं गल्लां अज दे भाग दे नाल ही कमाद दी देखभाल बारे डॉक्टर गुलजार सिंह संधेड़ा दी गल्लबात सुनोगे। 7:40 ते तुसीं सुनोगी अंग्रेजी वार्ता मिनिमलिज्म लिविंग मोर विद लैस। वार्ताकार होणगे मधु शर्मा। जिंदगी हसीन प्रोग्राम होएगा रात 8:00 बजे। रात 9:30 बजे पेश किया जाएगा प्रोग्राम खेड संसार। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च तुसी डॉक्टर योगेश गर्ग दा शास्त्रीय गायन सुनोगे राग रागेश्वरी च। रात 10:30 बजे पेश किया जाएगा प्रोग्राम सरगम। डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र से तुसी 3:00 बजे चिट्ठे मिठिया प्रोग्राम सुनोगे। FM 100.6 MHz से सवेरे 10:00 बजे पेश किया जाएगा प्रोग्राम रंगला पंजाब। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR राही भी सुन सकते हो।

0: राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य द्वादशवर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छभारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धं FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युद्विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्यांच उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति, यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषणदलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति। दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16-25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंजनगरस्य पुरैनियाक्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति, अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः। भारतस्य हज समित्या हज 27-2000 वर्षस्य कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्। नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति। FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य पाकिस्तान दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश ने आज दिया हुन तक दिया मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों दौरान कीतियां गई तब्दीलियां ने शासन अते प्रशासन विच जनता दे विश्वास नूं मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ च कल एक कोचिंग सेंटर विच भयानक अग लगन कारण 15 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हां विचों ज्यादातर विद्यार्थी सन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने दुखांत ते दुख प्रगट किया है। शिवसेना नेता ते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि शिवसेना धड़े के 6 लोकसभा संसद मैंबर शिवसेना विच शामिल हो गए ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उलान बातर विच मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना नाल मुलाकात की। बरतानिया प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री ते लेबर पार्टी के नेता वजो अस्तीफा देने का ऐलान किया है। बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा है पछमी बंगाल की तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद, नशे ते नौजवानों का प्रवास सूबे ते समुचे देश ले चिंता का विषय बने हुए ने। पंजाब मंत्री

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम सोनी सवेर तो इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। कुछ शख्सियतां अजिहियां होंदियां ने जिन्हां नूं याद करदियां होया ये गल याद आती है कि असी जीवन दे विच चाहिए तां किन्ना कुछ कर सकते हैं, ते इस जिंदगी दे हर एक दिन नूं भरपूर इस्तेमाल करदियां होया इस नूं बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। अज गल कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी होना दी, उन्होंने अज याद कर रहे हैं असी। उन्हां दे बारे बहुत ही अजिही गलबात करनी बनती है जो सानू प्रेरणा दे सकती है। 11 साल की उम्र में ही कहते हैं कि उन्होंने मैट्रिक की प्रीख्या शानदार अंकों के साथ पास कर ली सी। बहुत ही होशियार विद्यार्थी सन ते लगभग हर प्रीख्या दे विच वो पहले दर्जे दे नाल पास हुंदे सन। उन्हां दे पिता आशुतोष मुखर्जी इन्ने प्रसिद्ध सन कि लोग उन्होंने टाइगर ऑफ बेंगाल के नाम नाल जानते सन। राजनीति विच आउण तों पहलां उन्हां दी पहचान एक सिक्ख्याविद ते लेखक वजो ज़्यादा सी। ते ए वी उन्हां दे बारे बहुत ही महत्वपूर्ण गल है कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता दे सब तो नौजवान उपकुलपति बने सन, जो उस समय एक बहुत वड्डी उपलब्धि मनी जाती सी। भारतीय भाषावां विच उच्च सिक्ख्या दे हक विच सन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ते मानदे सन कि सिक्ख्या मात भाषा विच भी मिलनी चाहीदी है। उन्हां नूं पढ़न दा बहुत शौक सी ते उन्हां दी निजी लाइब्रेरी विच हज़ारां किताबां सन। बहुत ही अनुशासित जीवन जिउंदे सन ते समें दी पाबंदी दे लई उह जाने जाते सन। 1953 दे विच उन्हां दी मौत तो बाद भी उन्हां दे जीवन ते विचारां ते कई किताबां लिखियां गईयां। अज भी उन्हां दा नाम भारतीय राजनीति दे सब तो चर्चित इतिहासक व्यक्तियों विच्चों एक मन्या जांदा है। कई भाषावां दे उह ज्ञानी सन। सो उन्हां नूं अज याद करदिआं होइआं इह गल सिखण नूं मिलदी है कि इंसान जेकर चाहे उसे मन विच लगन होए तां उह बहुत सारियां इस तरह दियां प्राप्तियां अपने जीवन च हासिल कर सकदा है, बहुत कुछ अचीव कर सकदा है। सो उन्हां दी शख्सियत सानूं प्रेरणा दिंदी है कि असीं जेकर चाहिए तां जिंदगी दे इस प्याले दे विच बहुत समुंदर भर सकते हैं।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है।

0: स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
0: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप

0: और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड,

0: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत

0: ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टारमर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही के

0: headlines the Times of India. Fresh power shift in UK as Starmer quits, writes Hindustan Times. US-Iran forward six-day roadmap to final deal, reads the headline in the Tribune. The US has temporarily lifted curbs on Iranian oil sales and dollar-denominated payments, writes the paper. The Indian Cybercrime Coordination Centre of the Ministry of Home Affairs has sounded alarm over a new cyber fraud known as Boss Scam or CEO Impersonation Fraud, reports the Pioneer. An engineer from Rajasthan used artificial intelligence to hack into the Rajasthan Public Service Commission portal and delete his competition for a government job, writes the Indian Express, highlighting the misuse of AI platforms. And finally, to enhance ease of commuting and strengthen availability of amenities, the NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी है खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव पहला चुनवीं खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दे तेजी नाल विकसित होना ते एक भरोसेयोग विश्व शक्ति बनने पिछे राष्ट्र पहलां दा सिद्धांत मुख प्रेरक रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सन्मान समारोह विच पद्म पुरस्कार प्रदान करनगे उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग हादसे दे संबंध विच चार अधिकारियों मुअत्तल कर दिता जबकि चार मुलजमान गिरफ्तार किया गया है कतर ने रास लाफान संती खेत्र विच होए LNG धमाके विच 12 भारतीय नागरिकां दी मौत दी पुष्टि की है ते कैलिफोर्निया विच अज तो शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूरनामेंट विच लक्ष्य सेन ते तन्वी शर्मा भारत की अगवाई करनगे ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ
3: ਭਾਰਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅਭੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਮਿਟ ਸੇ ਲੌਟਾ ਹੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਹਰ ਨੇਤਾ हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है सबसे बड़ा सिद्धांत है
2: सरकार के 12 सालों के कामों का जिक्र करदे श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया खादी ते स्थानिक उत्पादों उत्साहित करने वर्गियां पहलकदमियां नागरिकों की राष्ट्र निर्माण प्रति वचनबद्धता कारण सफल हुई ने
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया खादी खरीदने पर जोर स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

फिल्म आप आए बहार आई दा ए गीत बहुत सुपरहिट रहा सी। ते इस फिल्म दा ए गीत जो भी खूबसूरत सैड सॉन्ग्स ने उन्हां दे विचों मन्या जांदा है, ते इस गीत नूं तां लोग पसंद करदे ने अज भी। इस फिल्म दे बाकी गीत भी सदाबहार ने। जेकर असी इस फिल्म दे रिलीज़ दे दौर दी गल करिए तां उस दौरान राजेश खन्ना दा स्टारडम चरम ते सी ते बॉलीवुड विच उन्हां दी फिल्मां दा दबदबा सी। इस कारण आप आए बहार आई फिल्म उम्मीदों के मुताबिक वड्डी कमाई तो नहीं कर सकी, पर बॉक्स ऑफिस से नाकाम भी नहीं रही। तो फिल्म की सब तो वड्डी सफलता तो इसे गीत मने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग की जेकर गल करिए, इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर जम्मू तो कश्मीर के इस दृश्य फिल्माए गए सन, जिसके कारण इसकी सुंदरता होर भी ज़्यादा वध गई। तो इस फिल्म की जो रोमांटिक स्टोरी सी उस विच इना सीन्स ने भी बहुत वड्डी भूमिका निभाई। हुण प्रोग्राम च इस फिल्म चो अगला गीत हेमलता मोहम्मद रफी ते साथियां दी आवाज़ विच आओ सुनदे हां।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक पे, वाजी वाह।
1: फसी
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो, आरबीआई कहंदा है
1: जानकार बनो सुचेत रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण गज़लां पेश कर रहे हैं। सब तो पहला सुनाउण जा रहे हैं जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ विच गज़ल।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको न भूल पाएंगे। ये अगली गजल है अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन देवास।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश दे विच अगले कॉलर दोस्त देखते हैं कि आई नहीं। हेलो
1: मैडम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल
0: सत
1: जी।
0: श्री अकाल जी, स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो?
1: सुखदेव सिंह बस्ती सिख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। ते मैडम जी, बहुत वधिया तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो।
0: शुक्रिया जी,
1: परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला विच रखे, इसे तरह सोहणे सोहणे प्रोग्राम लै करदे रहो। धन्नवाद
0: शुक्रिया। सुखदेव जी, गाना कड़ा सुनोगे तुसीं अज?
1: मैडम जी। मुकेश दा कोई भी गीत सुना दिओ।
0: ठीक है जी, मुकेश तुहाडे फेवरेट सिंगर ने।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है जी, उन्होंने गाए सारे गीत बहुत सोहने ने।
1: बहुत वधिया गीत गाउंदे ने जी, आनंद आउंदा बड़ा सुन के जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ते ठीक है जी, सुनने हैं तुहाडी पसंद ते। मुकेश हुणां दी आवाज़ विच गीत नाले लता मंगेशकर साथी फिल्म चो गीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरु मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश

0: के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
2: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी है बिल्कुल जी, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लेके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच रोजाना दी तरह तुहारे बहुत सारे व्हाट्सएप ते सुने है। बिल्कुल जी, तुहाडे नाम दे नाल तुहाडे भेजे हुए गीतां दी फरमाइश, स्रोतियों भेजे हुए तुहाडे संदेश, गीतां दी पसंद ते उन्हां ते आधारित अज दा ये प्रोग्राम जिस विच मैं रुपिंदर कर रही हाँ तुहाडा दिलों स्वागत। ते फिर शुरुआत करिए तुहाडे ही भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस दे नाल। करणवीर हाउस तो पूछो कैंचियां वाला बठिंडा पंजाब तो बड़े ही प्यार दे नाल मैसेज साडे कोल पहुँच गया है प्रेम सिंह जोड़ा दा। मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन ते अभिजोत होना दा मैसेज है जी। ते इन्होंने अपनी पसंद भी बखूबी साडे तक पहुँचा दिती है। मुल्लापुर डाका मंडी तो राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम जैन ते इन्हां दे सारे ही साथियों ने भी साडे कोल मैसेज जिहड़ा उह भेज दिता है। तपा मंडी तो शमशेर सिंह, हांस सतपाल, मान सिंह, इन्हां सारे ने मैसेज सानू भेजे है जी। अगला मैसेज साडे कोल पहुँचया है जी प्यार भरी नमस्कार दे नाल, बड़ा ही रंग बिरंगा ते खूबसूरत मैसेज। अभिजीत गवाहरकर दा मैसेज है जी राही सी। सरिता गवाहरकर ते इन्हां दे नाल सिद्धांत, प्रिंस, एकांश ते सारा ही इन्हां दा परिवार, इन्हां ने उमरखेड़ा महाराष्ट्र तो सानू मैसेज किया है। अगला मैसेज फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो भेजन वाली ने गुरविंदर सिंह पांडा, इंदरजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा, जे एस रामगढ़िया होनी, इन्हों सारे ने मैसेज किया है। तो अगला मैसेज पहुँच गया है साढ़े कोल भेजन वाले ने जसवंत सिंह, तो कहते ने नाल मेरे एकम ते मनकिरत जंडवाला मीरा सांगला तो इन्होंने मैसेज किया है फाजिलका तो। ते लो जी, इन्हां सारे दी पसंद ते प्रोग्राम दे विच सुनदे आं हर्षदीप कौर होणा दी आवाज़ दे विच ए गीत।

लो जी दोस्तों, इस गीत तो बाद आओ देखते हैं अगलियां फरमाइशां साढ़े कोल किनारियां आईया ने। डुमराव बिहार तो ये फरमाइश है जी डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी दी, डॉक्टर सोनम अदीबादी ते नाल ही नाल दानिश अंसारी होना दी। गोला बाजार बक्स तो ये फरमाइश है जी शरदानंद आर्या दी, अभिनंद ते अभियानंद परमानंद आर्या होनी इन्हों के नाल। ते नाल ही नाल अगली फरमाइश साढ़े को आई है बक्स बिहार तो, ते माफ करना बक्सर बिहार तो, शरूफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी ते सुरित रमेश राहू होना दी फरमाइश। अगला मैसेज भेजे है जी सानू निसार सलमानी होना ने, नौशाद सलमानी बीबी आलिया ते आयान बाबू होना दी फरमाइश है धनोरी तेली वाला तो। अगली फरमाइश भेजन वाले ने सुखदेव कलेर ते नाल ही इन्हां दे नरेश संतोष रानी पूजा रानी पुनीत निगाह ते नाल ही इन्हां दा शुभदीप कलेर वार्ड नंबर 21 बल्ला चोर तो इन्हां ने फरमाइश भेजी है जी। ते हाँ ये फरमाइश आई है जी सानू अगली शुभदीप होना दी, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश वार्ड नंबर 1 तो बल्ला चोर तो। अगला मैसेज साढ़े को पहुँच गया जी, कहिंदे तमक जलंधर प्रोग्राम दे विच सानू शामिल जरूर करिया करो। बिल्कुल जी तुसीं शामिल हो रहे हो। फांसी हिसार तो ये मैसेज है जी, ते भेजन वाले ने राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी ते इन्हां दे नाल पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी होना दी फरमाइश। अगला मैसेज है जी, कहिंदे गीत कोई भी सुनाइए पर नाम साडा जान ना दियो। बिल्कुल जी, लेवाई छत्तीसगढ़ तो मैसेज है गुलाबदास मानिकपुरी होना दा, इन्हां दे नाल राजा दास रानी मानिकपुरी। अगला मैसेज पहुँच गया जी संदीप मक्कड़ होना दा, इन्होंने ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ ते नाल ही भरत मक्कड़ होना दे नाल मैसेज किया है। कमल सानी ते इन्हां दे बाकी साथी जड़े ने वो नाल ने। हाँ चौंक गराया जलंधर तो मैसेज आया है। हाँ लॉर्ड जी, तो साढ़े स्रोते जड़े ने वह सानू आगाह भी कर रहे हैं कि कहड़े मैसेज जड़े ने वह सही ने ते केड़े नहीं ने। अगला मैसेज पहुँच गया जी साढ़े कोल नमस्कार दे नाल बड़ी खूबसूरती दे नाल सजाया होया मैसेज जगदीश धाकड़ होना दा, अग नाल इन्हां दे रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ ते नाल ही शिवांगी धाकड़ होनी। इन्होंने मैसेज सानू किया है जी आलोट तो जिला रतलाम MP तो मैसेज आया जी। अगला मैसेज पहुँच गया है जी पिंड गुराए तो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो लक्षवीर सिंह अमनजीत सिंह रतमानजोत कौर ते नाल ही इन्हां दे नाल गुर तेजवीर जड़े ने वह ने, तो इन्हां सारे ने मैसेज करके अपनी पसंद का गीत भी जड़ा वह भेज दिता सानू। चौटाला हरियाणा तो मैसेज है जी दारा

करमजीत अनमोल होना दी आवाज दे विच हुणे तुसी सुनियाई फरमाइशी गीत। अगला गीत जिन्हां दी फरमाइश बनेगा ते लो जी बहुत सारियां व्हाट्सएप फरमाइशां दे नाल अगला गीत सजेस्ट करन वाले फरमाइश भेजन वाले ने मोहाली तो अमनदीप सिंह सैनी, लाभ कौर सैनी, जीवन जोत कौर सैनी, सैवी सैनी ते निद्रिस सैनी होना दे नाल। श्री गंगानगर राजस्थान तो पदमपुर जिले तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा होना दा मैसेज है जी। अगला मैसेज साढ़े को पहुँच गया है जी मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग होना दा, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया ते सारा ही नारंग परिवार। अगला मैसेज साढ़े को पहुँच गया है सुरेश खुराना पप्पी होना दा, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज ते छोटू होना दा मैसेज। एस के पप्पी होना दे नाल इन्होंने भेजे है MLB रोड ग्वालियर तो ये मैसेज आया है जी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल इन्होंने मैसेज किया है सानू ते हाँ तस्वीर भी बखूबी भेज दिती है। सुरेश पप्पी होना दे नाल किरण खुराना होना दा भी मैसेज है जी ते सारा ही ये परिवार जिसने मैसेज किया है। विकी मायाल होना दा मैसेज, संतोष मायाल, रोहित, रोनित ते पूरा ही मायाल परिवार इन्होंने पिंड सुबाना तो मैसेज किया है जिला फाजिलका तो। जगदीश कुमार मक्कड़ होना दा मैसेज, अरविंद, मुकेश, नीरज, भुविन ते नाल ही पूरा मक्कड़ परिवार इन्होंने मैसेज किया है डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो। अगला मैसेज पहुंच गया जी सानू पिंड थाने की डाब मलोट तो ही मैसेज आया है भेजन वाले ने शबशेर सिंह कोलदर, नाल ही जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर ते तरनवीर सिंह ते मनताज होना दा मैसेज। अगला मैसेज खूब प्यार भरी सत श्री अकाल भेजी है जी इन्होंने नालों नाल बिल्कुल जी। अगला मैसेज जिला अंबाला तो हरियाणा तो है पिंड उगाला तो राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन ते इन्हां दे परिवार दे सारे ही मैंबर। अगला मैसेज है साढ़े कोल हाँ बहुत ही पूरे ही नावां दे नाल रचा होया मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकीर ते मोहम्मद अलकाम खत्री होना दा मैसेज ते अल्तमज होना दा मैसेज, रमेश ते अलमश होना दा मैसेज, नाल ही मोहम्मद शादाब खत्री होना दा मैसेज है, बेगम सलाम खत्री होना दा मैसेज ते आशिया बी खत्री होना दा मैसेज, सादिया बी खत्री, नवाज

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। इन्हें न्यूज ऑफ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: योग रखे निरोग। इस शब्द विच है कि असी निरोग रह सकते हाँ जेकर असी योग कर लईए, थोड़ा अपने प्रति ध्यान दे लईए जिन्हां असी कम्मां कारां वल ध्यान दिंदे हाँ। असी किन्नियां ही परेशानियां तो लंघते हाँ, समा आउण ते सानूं पता लगता है कि असी की अपने हथों खो लिया है। असी बीमार हुंदे हाँ अपने ही करके, क्योंकि असी पहलां ध्यान नहीं दिंदे, साडा खान पान, साडा अनुशासन विच ना रहना, नींद दी कमी होना, जेकर कोई बीमारी हो गई तो उस प्रति लापरवाह रहना, इस सारियां चीज़ां इफेक्ट करदियां ने, असर पाउंदियां ने साडे शरीर ते। और अज दे समय दी इक अहम लोड़ है योग करना, कसरत करनी और अपने आप नूं बीमारियों तो बचाउणा। ते इस बारे होर जानकारी लैंदे हां योग गुरु सतीश मुंजाल जी कोलों। सतीश मुंजाल जी, आप जी का स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार जी, थैंक यू।
0: थोड़े को जानना चाहते हैं कि योग का महत्व की है, इसी इम्पोर्टेंस की है।
1: देखो योग

0: जी प्रिया जी, साडा पंजाबी विरसा, साडा पंजाबी विरसा तो वैसे बहुत ही वड्डा है। इहदे चों असीं जदों भी कोई ना कोई गल कढ़दे आं तां उहदे बारे सानूं जदों जानकारी मिलदी आ तां मज़ा सानूं भी बहुत आउंदा है, ते फिर दिल करदा भी है कि असीं श्रोतियां नाल भी सांझी करिए।
1: जी
0: साडा विरसा दे तहत अज असीं इक अजिही विरासत दी गल करन जा रहे हाँ जो स्थाई रूप च किते वेखण लई नहीं मिलदी, पर हरेक पंजाबी नूं किते ना किते तरां पता ही है कि इह की चीज़ है।
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: क्या।
0: ना तो कोई जगह है, ना इमारत है, ना कोई औरत है, ते ना ही कोई चीज़ है, फिर भी साड़ी पंजाबी विरसे दा एक हिस्सा है।
1: अलका जी, जिहड़ी बुझारतां तुसीं पा रहे हो ना, मैनू लगदा कि बड़ियां सोचां च पै गए ने साडे सरोते, ते दस ही दिओ उहनां नूं फिर असीं
0: दस
1: विरसे च
0: दिने,
1: गल कादी करनी है।
0: बिल्कुल जी, असीं इन्हां नूं दस दिने आं। अज असीं गल करन जा रहे हां जुगनी दी। जुगनी पंजाबी लोक गीतां दी एक बहुत ही लोकप्रिय शैली ते परंपरा है।
1: जी
0: ये एक लोक गीत है, किन्ने ही गायकां ने इस नूं अपने अपने तरीके नाल गाया है। जदों भी पंजाबी लोक गीतां दी गल हुंदी है तां जुगनी दा जिक्र जरूर आंदा है।
1: बिल्कुल जी, ते इहनू बई चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे विच ना पूरे चाह दे नाल गाया भी जांदा है, सुनाया भी जांदा है, ते सुनिया भी जांदा है। ते जदों ना अलगोजियां दे सुर दी चाशनी च इहनू भिओ के सुनाया जांदा है, ते मतलब जुगनी हर संगीत सुनन वाले नू या जिस इंसान नू संगीत ना प्यार ना भी होवे, मोहब्बत ना भी होवे ना, वो उनू भी अपने नाल जोड़ लैंदी है। ते नाल दी नाल अलका जी, जो तो मैं जुगनी बारे जानन दी कोशिश कर रही सी, भई मैनू तां लगदा सी कि जुगनी सिर्फ पंजाबी विच ही गाई जांदी है, बल्कि मैं इत्थे गलत सीगी, क्योंकि इस तो इलावा है मुल्तानी, फारसी, अरबी ते होर भी कई भाषावां दे विच गाई जांदी है। जुगनी गाण वाले पुराने ते जिहड़े जद्दी पुश्ती गायक हुंदे सी ना, उन्हां नूं सुनन दे मतलब जदों तुसीं उन्हां नूं सुनदे हो ते तुहानूं इह जाहिर हो जांदा है कि जुगनी सिर्फ इक गीत नहीं है, है ना, एक फोक गीत नहीं है या कहानी नहीं है जिसनों गीत दे जरिए दस्या जा रहा है,

कॉकटेल एक फिल्म आई सी सैफ अली खान दी आई सी दीपिका पादुकोण सी, उहदे विच जुगनी दा जिहड़ा रीमिक्स बनाया गया सी बड़ा ही प्रसिद्ध होया सी। उस तो बाद आलिया भट्ट दा पटाका गुड्डी गाना है, उस दे विच भी जुगनी दा जिक्र जिहड़ा है उह सानूं सुनन नूं मिलदा है। तो जुगनी जिहड़ी है उहदी होंद जिन्नी पुरानी है उहदा साथ भी साडे नाल उन्ना ही लंबा है ना अलका जी। तो चलो जी, जुगनी नूं याद करदे हुए एक होर गीत साडे सरोतियां दे लई।

0: विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 गहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों सामने के बाद विरोध पर इस प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। हॉबिट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

0: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:06 होए ने। आ हुण तुहानू अज दे प्रसारित होण वाले बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दी जानकारी दे दईए। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक, ते फिर 2:00 तो लैके 2:15 तक दा समां रहेगा प्रोग्राम फौजी वीरा लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच जीत लाल लहरी ते साथियां तों माता दियां भेटां सुनोगे। साडी दूसरी सभा दे शुरू विच मुख खबरां तों बाद 4:02 ते लैके हाजिर होवांगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:30 असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। 5:30 दा समां रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार दा। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच कम दियां गल्लां मंडियां दे भा दे नाल नाल कमाद दी देखभाल बारे डॉक्टर गुलजार सिंह संदेड़ा दसणगे। होर गीत संगीत भी होएगा। 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता सुनोगे मिनिमलाइजम। लाइवनिंग मोर विद लेस मधु शर्मा होना दी। रात 8:00 समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। 9:30 खेड संसार ते 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च आज शास्त्रीय गायन सुनोगे डॉक्टर योगेश गर्ग होना तो राग रागेश्वरी। ते तबले ते इन्हां दा साथ देंगे हरसिमरन सिंह, हारमोनीयम ते साथ दिता है राकेश कुमार होना ने। रात 10:30 दा समा रहेगा प्रोग्राम सरगम दा। सदे DTH आकाशवाणी पंजाब सेवा तो दिने 3:00 तो 4:00 तक तुहाड़ा पसंदीदा प्रोग्राम होएगा चिट्ठियां मिठियां। ये सन साढ़े अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। दिन दे 1:10 होने वाले ने। हुण तो कुछ ही देर बाद तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां। बस कुछ कु पलां दा इंतजार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.com।

फौजी वीरो जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे ही प्रोग्राम दे विच। ते रोज़ दी तरह लैके हाजिर हो गए हाँ तुहाडे दी खूबसूरत नगमिया दा ई पिटारा। ते फिर प्रोग्राम दे विच आओ सुनवाने हाँ तुहानू ये पहला गीत मन्ना डे होना दी आवाज़ दे विच।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: फौजी वीरों, खूबसूरत गीतां दा सिलसिला चलेगा, पर जेड़ा वेल है ना, वो इशारा कर रहा है कि प्रोग्राम नू कुछ देर दे ले इत्थे ही थामना पएगा, क्योंकि आकाशवाणी तो समा हो रहा है समाचारां दा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। दिन दे 1:40 हो रहे ने। आओ हुण सुणदे हाँ पंजाबी दे विच खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने नवी सुरक्षा खतरियां ते चुनौतियां प्रति सुचेत रहने की लोड़ ते जोर दिता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड ते नीलामी पोर्टल nafix.in नूं लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम ते अल नीनो प्रभाव अते खेतीबाड़ी ते इसके असर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों नूं कोई मुश्किल दरपेश ना आउण देण दी सरकार दी वचनबद्धता प्रगटाई। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत ते अमरीका एक मजबूत दवले व्यापार समझौते नूं अंतम रूप देने वाल फैसला कुन तौर ते अगे वध रहे ने। अयोध्या के राम मंदिर नूं मिले दान की हेराफेरी के इल्जामों की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने अपनी मुढ़ली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार नूं सौंप दी है।

सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनेल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना

0: नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स तीन जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड्स दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड्स से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कूरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तराफ़ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तजारत और सनत, अद्वियात, अदब व तालीम, खेल कूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आज़ादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
0: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब

0: करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ से इक्तसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ियात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुर्दबुर्द के इल्जामात की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकायक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वज़ीरों, सेक्रेटरीज, ज़िला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबियर्ग में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 जगहों पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरो, एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाडा प्रोग्राम फौजी वीरा लेच तेलो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो एक बार फिर तो हाजिर हो गया खास तुहाडे लिए। ते हुन फौजी वीरो, जज्बातां नू शब्द देण दा रूप, जिथे दिल दी गल सुरां विच टलदी है ते मुहब्बत शायरी बन के महफिल विच उतर जांदी है। पेश है जी बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म साजन चो, आवाज़ अलका याकिनी होना दी।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआत मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान

0: पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से Nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड

0: सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी

0: प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली धरती आज दी इस प्रोग्राम दे विच लेके हाजिर हुए हैं माता दियां पेटां। जी हाँ, रंगली धरती दे आज दे इस प्रोग्राम दे विच सुनदे हैं माता रानी दी महिमा नाल भरियां माता दियां पेटां, जीत लाल लहरी ते साथियां दियां आवाज़ां दे विच।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ थे।
1: इस अंतराल तो फिर तो स्वागत है तुहाड़ा प्रोग्राम रंगली धरती दे विच। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुन रहे हो माता दिया पेटां।

जी बिल्कुल, इस गीत विच भी जे तुसी ध्यान नाल सुनिया होएगा तां सूई धागे दी जो है गल कीती गई सी। ते जी बिल्कुल, सूई धागे दी भी गल करांगे। फिलहाल तुहाडे खत सानू जो है आवाज़ा मार रहे ने, क्योंकि तुसी सोच रहे हो कि पहला जो

सुन रहे प्रोग्राम चिठियां मिठियां मक्खू फिरोजपुर तो लिख रहे ने बिला बजाज हैप्पी कपूर ते मुनीश बजाज डब वाले तो जेके बकालिया सुनीता संजय मीना कोटली कलां पंजाब तो यादविंदर सुखविंदर रविंदर मनजीत ते गुरजोत साधुल शहर तो प्रकाश चौहान मरु प्रकाश शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान खुरजा उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा प्रकाश चंदन ते अंकुश आदर्श नगर मलौट तो लिखने ने राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरभ शाइना निवान ते सारे साथी लिखने ने जिला मुरादाबाद तो लिखने ने मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी रितिक ते बलवीर ते इन्हां दे

नमस्कार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 4 बजे ने साढ़े अज की दूसरी सभा दे प्रोग्राम हुन शुरू हुंदे ने। सभा दे शुरू च पेश ने मुख खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने नवे सुरक्षा खतरियां ते चुनौतियां प्रति सचेत रहने की लोड़ ते जोर दिता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड दे नीलामी पोर्टल nafex.in नू लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम ते अलनीनो प्रभाव ते खेतीबाड़ी ते इस दे असर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों नू कोई मुश्किल दरपेश ना आउण दी सरकार दी वचनबद्धता प्रगटाई। भारत विच अमरीकी राजदूत सरजियो गौड़ ने भारत अते अमरीका विच एक मजबूत दुअले व्यापार समझौते नू अंतिम रूप देण दे वल फैसला कुन तौर ते अगे वध रहे ने। अयोध्या दे राम मंदिर नू मिले दान दी हेराफेरी दे इल्जामां दी जांच कर रही विशेष जांच टीम ने अपनी मुढली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार नू सौंप दित्ती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नू उहनां दे शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। पंजाब च गुरदासपुर के सठियाला हैड वर्करस नेड़े अपर बारी दुआबा नहर विच बीते दिनी पए 100 फुट के पाड़ नू पूरा करन दा काम अज भी जारी है। पंजाब सरकार वलों 3 साल दौरान 18 सरकारी अते गैर सरकारी संगठनां दे सहयोग नाल चराए जा रहे बिरधकरां नू कुल 15,70,00,000 रुपए की माली सहायता जारी की गई है। केंद्र सरकार के सूखम छोटे अते दरमियाने उद्यमों बारे विभाग अधीन नैशनल एस

कोल कुमाई लालना गुरमंदीना, सुन सबद तुम्हारा मेरा मन पीना। प्रभु दा शब्द ब्रह्म है, शब्द तुनात्मक भी है ते वर्णात्मक भी, शब्द गुरु है ऐसा बाबा नानक जी ने फरमाया सी। शब्द गुरु सुरत तुन चीला, जदों इंसान दी सुरत प्रभु दे शब्द विच तुर अंदर तक प्रवेश कर जांदी है, अर्थात उसकी सुरत अते मन प्रभु दे शब्द दे अनुसारी हो जांदे ने तां प्राप्ति हो जांदी है। अज्ञानता दा हनेरा मनफी हो जांदा है, शब्द दे नाल ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है, इंज महसूस हुंदा है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। दरअसल सच्चा गुरु दीपक गुरु है, गुरु दा शब्द ऐसा दीपक है जिस दे उजाले दे नाल अज्ञानता दा हनेरा बिनस जांदा है, मन मंदर दे द्वार खुल जांदे ने, मानो रत्ना दी कोठड़ी खुल जांदी है ते अनूप प्रभु दे दर्शन दीदार हो जांदे ने। ऐसा राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दुपदे कर सतवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी च फरमाया गया है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन सेव अंधकार तेह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द दा गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। साहेब श्री गुरु नानक देव जी राग गौड़ी च उचारी गई एक रचना च गौड़ी महला पहला दखणी सरलेख अधीन उचारे गए शब्द च फरमाउंदे ने कि सच्चे गुरु दी यही सिख्या है, अकाल पुरख पासों सच्चे नाम दी दात प्राप्त करके तन ते मन सीतल हो जांदे ने, ते मन इस तरह निर्लेप हो जांदा है जिस तरह जल दे विच कमल निर्लेप रहिंदा है। प्रभु दे शब्द विच रत्या मन ईख भाव गन्ने दे रस दी न्याई मिठा हो जांदा है। बाबा नानक जी फरमाउंदे ने, सबद रते मीठे रस ईख। सुनदे आ कमलजीत कौर होरां पासों ए वार्ता।
1: सबद तो भाव गुरु द्वारा उच्चारण कीता सबद जां बाणी, रते भाव प्रेम वाले। बाणी ओ है जो असी मूहों बोलदे हाँ, बोल के अपनियां भावनावां नूं दसदे हाँ। गुरबाणी गुरु दी है, गुरु दा बोल है, गुरु मिठ बोलड़ा है ते उस दी बाणी मिठी है। सारे गुना नाल भरपूर आत्मक जीवन देन वाला परमात्मा किसे दी काल कमाई नूं बिरथी नहीं जान देंदा, मेहनत दी कदर करदा है। इसे लई किसे नाल कूड़ा बोलदा ही नहीं, सब दियां भावनावां दी कदर करदा है, मिठ बोलड़ा है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थक्की जी ओ कदे ना बोले कौरा। गुरु दी सच्ची सिख्या प्राप्त करके शांत मन ते शरीर सदा थिर रहन वाले।

मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुले ओ करम पयो पर गासा, कट कट हर हर डीठा। इस शब्द अगायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत

0: 1-800-298-3036 ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: 10 लाख दी लॉटरी मेरी।
1: फसी फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: आ हुण सुनते हैं आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ जी बाल साहब, देखो जिदा आप कहने हैं कि हर देश अपना विधान अपना संविधान, तो
1: जी
0: साडा भी अपना संविधान है,
1: जी
0: सानू अपने संविधान ते माण है।
1: सही गल है जी।
0: तो ये पिछे क्योंकि बहुत सारा बड़ा इतिहास आप सारे जानते हैं, कुरबानियां दे बाद सानू कितने आज़ादी जाके जड़ी है देखने सानू मिली है।
1: बिल्कुल जी।
0: सो इस करके अज

0: 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले शाम दी 7:30 वज रहे ने। हुण तुसीं सुनोगे पंजाबी खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे सिविल सम्मान समारोह विच पद्म अवार्ड प्रदान कीते। डेरा सचखंड बलां दे अध्यात्मिक आगू संत निरंजन दास जी अते झाड़ू योद्धा साबका IPS अधिकारी सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू नूं पद्म श्री नाल नवासिया गया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारतीय झंडे वाले 10 समुद्री जहाज फारस की खाड़ी खेत्र विच मौजूद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों नूं नागरिक देवो भव की सोच नाल नागरिकां नूं शासन दे केंद्र विच रखण दी अपील कीती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो कारण संभावी माड़े प्रभावों नाल नजिठण विच किसानां दी मदद करन लई पहलां तों तैयारियां कर रही है। ते FIH हॉकी प्रो लीग विच अज लंडन विच भारत दा मुकाबला पाकिस्तान नाल हो रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे सिविल सम्मान समारोह विच पद्म अवार्ड प्रदान कीते। पत्रकार पी नारायणन नूं साहित्य ते सिख्या श्रेणी विच पद्म विभूषण ते साबका जज KT थॉमस नूं समाजिक कारज दे खेतर विच पद्म विभूषण नाल सम्मानित कीता गया है। साबका टेनिस खिडारी विजय अमृतराज, अदाकार मामोटी ते गायिका अलका याग्निक नूं पद्म भूषण अवार्ड प्रदान कीता गया है। पंजाब तो डेरा सचखंड वल्लां जलंधर दे अध्यात्मिक आगू संत निरंजन दास जी नूं अध्यात्म दे खेतर विच पद्म श्री नाल नवासिया गया है।
2: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
1: संत जी सरवण दास संस्थावां राहीं समाजिक भलाई दे कारज करदे ने अते 70 सालां तों वध समें तों दुनिया भर विच गुरु रविदास जी महाराज दीआं सिख्यावां दा प्रसार कर रहे ने। चंडीगढ़ तो साबका IPS अधिकारी सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू नूं समाज सेवा दे खेतर विच पद्म श्री नाल सम्मानित कीता गया है।
2: सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू समाज सेवा।
1: प्रेरणादायक साबका IPS अधिकारी सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू नूं व्यापक तौर ते झाड़ू योद्धा वजों जाणिया जांदा है, जिन्हां ने सेवा मुक्त होण तों बाद साफ सफाई नूं उत्साहित करन लई अपने आप नूं समर्पित कर दिता। सफाई प्रति अपनी मौन पर शक्तिशाली वचनबद्धता लई उन्हां नूं देश भर भी सलाया गया। इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म अवार्डां दा ऐलान कीता सी। इन्हां विच 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण अते 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल ने। विदेश मंत्रालय ने अज दस्सिया है कि भारतीय झंडे वाले 10 जहाज अजे भी फारस की खाड़ी खेतर विच ने। अज नवी दिल्ली विच मीडिया नूं संबोधन करदिया मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि 17 जून नूं अमरीका अते ईरान विचकार समझौते ते दस्तखत होने तों बाद भारत आने वाले 11 जहाज होरमुस पणजोड़ विचों लंघे ने। इन्हां जहाजा विच भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल दे 3 टैंकर शामिल ने। हरेक विच 2,85,000 मीट्रिक टन तों वध कच्चा तेल, एक विदेशी झंडे वाला LPG वाहक, एक विदेशी झंडे वाला कच्चा तेल टैंकर अते खाद लियारे विदेशी झंडे वाले 6 जहाज शामिल ने। उन्हां उम्मीद प्रगटाई कि भारतीय झंडे वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होरमुस पणजोड़ नूं पार कर सकणगे। कतर दे धमाके बारे श्री जायसवाल ने कहा कि धमाके विच 12 भारतीय नागरिक मारे गए ने।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वालों पाकिस्तान दे कब्जे हेठले कश्मीर दी स्थिति बारे कीतियां गईयां टिप्पणियां दा जवाब दिंदिया बुलारे ने कहा कि अजिहियां टिप्पणियां गुआंढी देश वालों अपनियां नाकामयाबियां नूं छुपाउण अते मनुखी अधिकारां दे घाण तों ध्यान हटाउण दीआं बेचैन कोशिशां ने। उन्हां कहा कि भारत इन्हां मनघड़त दावियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द करदा है। उन्हां जोर देके कहा कि पाकिस्तान दे कब्जे हेठले कश्मीर विच चल रहे विरोध मुजाहरे पाकिस्तान दी दहाकियां पुरानी आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारां तों इनकार अते अपने गैर कानूनी अते जबरदस्ती कब्जे वाले खेतरां विच प्रशासनिक दमन दी नीति दा सिद्धा नतीजा ने। उन्हां उम्मीद प्रगट

0: फंड वो संचय किया, नाम में ही है संचय, तो जो संचय किया उसको आप 15 साल तक मिनिमम इसमें रखना है या 60 साल, जो समय पूरा हो पहले आप उसके बाद आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी एक तो आपके पास फंड एक्युमुलेट हो जाता है और जो बुढ़ापे के लिए आपके लिए पास एक रेगुलर इनकम एक होनी चाहिए, जो कि किसान भाइयों के साथ क्या होता है कि शरीर मजबूत है अभी आप कमा रहे हैं, आप बुढ़ापे में वो क्षमता किसी की रह नहीं जाती, या मजदूरों के साथ भी सेम चीज़ होता है, वो क्षमता रह नहीं जाती, तो उनके लिए ये PFRDA ने एक स्कीम लॉन्च की है नई, जिसमें कि इनको भी शामिल किया गया, पहले और स्कीमों में फिट नहीं बैठ रहे थे तो इसमें लाए हैं PFRDA नई स्कीम। तो इसमें क्या है कि इन लोगों को अच्छा सरल किया गया है स्कीम को, जिसके माध्यम से ये इससे जुड़ सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसा बहुत ज़रूरी है, हर चाहे उम्र का जो भी दायरा हो, जो भी समय हो, हर समय के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो उस समय के लिए आप ये पैसा इकट्ठा करके और वहाँ पे पेंशन उठा सकते हैं। इसमें कोई भी स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम बनाई गई है, जब मर्जी तब पैसे दीजिए, मतलब जब किसान के पास बचत आए, पैसे आए, उसने मान लीजिए फसल बेची या कहीं से और पैसे आए उसके, वो पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, धीरे धीरे संचय किया और वो बुढ़ापे में उसको पेंशन के रूप में उपयोग कोई भी कर सकते।
1: मेरा नाम संदीप कौर है, मैं क्रिसिल फाउंडेशन तो MIS एग्जीक्यूटिव, मैं 4 स्टेट देख रही हूँ, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। बेसिकली साडा काम की है गया कि अवेयरनेस प्रोग्राम करने पिंडा में जाके, सर RBI का एक प्रोजेक्ट चल रहा है मनीवाइज, जिदे विच असी बैंक दियां पॉलिसीज अवेयर करते हैं लोगों को पिंडा विच जाके, छोटे वड्डे कैंप करके, डोर टू डोर एक्टिविटी करके, इदे विच असी सारियां ही बैंक दियां पॉलिसीज बारे दसदे हां, जिवें कि इंश्योरेंस होगी, नैशनल पेंशन योजना होगी, बैंक खाता किवें ओपन करना, फ्रॉड तो किवें बचना, ये सारियां छोटियां छोटियां स्कीम्स जिहड़ियां लोगों तक नहीं पहुँचदियाँ उन्हां नूं असी घर घर जाके समझाने हैगियां लोगों नूं, उन्हां नूं दसदे हैगियां कि तुसीं किवें बैंक दे जुड़ना है, बैंक तुहाडी किवें सहायता कर सकता है, ये सारिया चीज़ा असी लोगों नूं जाके समझाईदा है कि डॉक्यूमेंट लगते ने, किवें तुसी बैंक दे विच जाके जानकारी लै सकते हैगे हो। इहदे विच जिवें कि अज दा प्रोग्राम हैगा NPS आउटरीच प्रोग्राम यूको बैंक ने करवाया, इहदे विच NPS नैशनल पेंशन योजना बारे दस्सिया गया कि असी 18 साल तो लैके 60 साल तक इहदे विच इनवैसटमेंट कर सकते हैं, 250 रुपये तो स्टार्ट कर सकते हैं असी, बेसिकली अगर एक दिन की अमाउंट असी शुरू करिए तो 17 रुपये एक दिन की अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, महीने की 500 रुपया जमा राशि कर सकते हैं, अगर साल की भी करना चाहिए तो साल की भी असी एक फिक्स अमाउंट जी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है कि तुसी हर महीने फिक्स अमाउंट जमा ही करनी है, तुसी अपनी मर्जी के नाल 6 महीने च एक बारी कर लो, साल च एक बारी कर लो, जिमें जिमें तुहाडी इनकम हैगी उवें उवें तुसी इनू इनवैसटमेंट कर सकते हो। नॉर्मली असी देखते हैंगे कि जो गरीब लोग ने और डेली नहीं पैसा कढ सकते, वह तो जिमें कह लो कि दिहाड़ीदार होंगे आ, वह 500 रुपया ही कमाते एक दिन का, अगर वह 500 रुपये के 17 रुपये भी कमा तो महीने का 500 रुपया वह इनवैसट कर सकते है इस स्कीम च। अगर थोड़ा सा इस तो उपर चले जाइए कि जेडे मंथली इनकम लै रहे है प्राइवेट सैक्टर च ज पब्लिक सैक्टर के काम कर रहे हैं, उन्हों का वो फिक्स एक अपनी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं हर महीने हर साल, ये की होएगा कि उन्होंने एक कॉरपोरेट्स अमाउंट जी काफ़ी वधिया मिल जाएगी, जी बुढ़ापे आके सू पेंशन के रूप में सू पैसा मिलेगा, वेद सू कि अपने जो भी आने वाले खर्चे है जेडे बिना दसे खर्चे आ जाते हैं, विह शादियाँ बीमारी होगी एवं जिन्हें भी खर्चे है असी उस पेंशन के रूप में आराम कर सकते हैं।
2: मेरा नाम रघुवीर सिंह चारण है, मैं PFRDA में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आज हमने यहाँ पे आउटरीच सेशन किया है जालंधर में, PFRDA से 120 आउटरीच सेशन कर रहा है NPS संचय की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। इसमें हमने बेसिकली NPS संचय के बारे में बात करी। अब मैं आपको एक बार NPS संचय की बेसिक जानकारियाँ देना चाहूँगा। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से लेके 85 ईयर्स की एज का है वो NPS संचय का अकाउंट ओपन कर सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 250 रुपये है, एक बार आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद में इसके आप मिनिमम 10 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबसिक्वेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 रुपये भी है। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आपका 250 रुपये रहेगा और उसके बाद आप 10-10 रुपये कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें आप सभी को अकाउंट ओपन करना चाहिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। यहाँ पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन हुई, उसमें हमने ये भी बताया कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, तो उसमें हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया।

0: था कि अगर कोई 20 साल का अगर कोई नॉर्मल नागरिक है वो एक अकाउंट ओपन करता है और अगर वो दिन के 33 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, 33 रुपये, 33 नहीं हो सकता पर सपोज 10 10 के 3 करके 30 कर दे, दिन का 30 होगा और महीने का लगभग 1000 रुपये हो जाएगा। उसका कॉर्पस जैसे हमने देखा था 48 लाख हो रहा है और उससे उसको 23,000 पेंशन मिल रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एनपीएस संचय में अकाउंट ओपन करें।
1: एसी भारत सरकार दे नेशनल पेंशन सिस्टम वालों करवाए प्रोग्राम ते आधारित रेडियो रिपोर्ट, सहायक सोनिया अते रवि शंकर, पेशकश आकाशवाणी जलंधर।
2: हुन पेश है आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

ते आबाद कर किते सुन्ने पे खंडर बने महल। यानी जिस धरती ते असी रह रहे हां ओ धरती भी एक सार नहीं, किन्ने ही रूप ने इसते, ते ओ रूप भी हमेशा एक सार नहीं रहंदे, बदलदे रहंदे ने। मतलब बदला कुदरत दा अटल नियम है। इसे तरह साड़ी जिंदगी दा अटल नियम भी परिवर्तन ही है, बदला ही है। ए भी इको तरह की नहीं रह सकती, बदलेगी ही। बस असी सुख दुख खुशी गमी हार जित इसनू एक्सेप्ट करना कबूल करना सीख लीए तो जिंदगी का यह सफ़र थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा, वरना जिंदगी बोझ तो सिवाए होर कुछ नहीं लगेगी। हसण तो बाद रोना ते रोण तो बाद हसना, बस यही जिंदगी है। आओ इस तरह का ही एक गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के।

0: जी हाँ, दोस्त कदों दुश्मन बन जाए तो दुश्मन कदों दोस्त बन जाए कुछ पता नहीं लगता जिंदगी दा। यही आप इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस कर रहे सी, गलबात कर रहे सी, विचार सांझे कर रहे सी कि भई वक्त जड़ा है, जिंदगी जड़ी है, वह निरंतर बदल रही है और इस बदलाव नूं असी एक्सैप्ट करना है, मन के चलना है, दिल छोटा नहीं करना किसी भी घड़ी दे विच। जेकर अज इंसान दे सुख दे विच है तां किसे तरह दा कोई ईगो या कमंड नहीं रखना, क्योंकि वक्त बदलदिया वक्त नहीं लगता। ते जेकर दुख दा दौर चल रहा है तां वी हिम्मत रखनी है, यह दौर भी खत्म हो जाएगा। तो इस दे नाल ही साडा अज दा ये प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे ही खत्म हुंदा है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले रात के 8:45 हो जा रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों बाद तुसी सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ
2: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान

0: किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण

0: जो मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayan

0: of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashvani News.
1: ये सबसे बड़ा अवार्ड था. आज भी मैं यही कहता हूँ. आज पद्मश्री आने के बाद में भी मैंने यही कहा कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है. आप सोचो, वो निर्णय नहीं लिया होता, वो बीज ही नहीं बोया होता, तो क्या आज वो बीज वट वृक्ष बन पाता? मैं हमेशा कहता हूँ, जो बीज बोया गया, जो नींव रखी गई, वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है. जो बीज बोया, बीज आज वट वृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है. तो हमारे लिए तो जी देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का सम्मान है. मैं ऐसा ही मानता हूँ.
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashvani.
2: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin. Then I started learning violin. And that journey continued for 18 years after that. Plus one and plus two, I joined another school, PS Senior Secondary School. That was a turning point. A in education is very, very important to me. See, any technology that we see, there's a good and bad. And it's very important to take all the good and eliminate all the bad. And this elimination of the bad comes from two good habits, good type of people who develop those systems, and then regulations. So three things play an important role. Today we have at least 3-4 companies who are working based on Shakti, and that is extremely important today. We need semiconductor companies here, not just design companies, but system companies which can make the entire system. So we have developed, if you say a mobile phone, right? There's some person who make the application processor. There's somebody who licenses the processor to them. So there's a company which licenses the processor and somebody makes a chip out of it. So we have companies which make the core and license it.
0: Among this year's inspiring Padma awardees is Budh Thai, a grassroots social worker from Maharashtra whose life has been dedicated to the welfare of tribal communities. For decades, Budh Thai has worked tirelessly to improve the lives of women and children in remote tribal regions through her efforts in education, healthcare awareness, nutrition and community empowerment. She has helped bring positive change to some of the most underdeserved sections of society. Let's listen to what she said, speaking exclusively to Akashvani News.
3: गांव इरानार में ही मेरा जन्म है. यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे. हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर की हूँ. तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे. तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे. फिर 8-9 साल की और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे. वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे. और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है. इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है. हम उनके पास जाना है. उनके साथ ही घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है. तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़े.

NRI मिलनी 2026 प्रोग्राम कराया जा रहा है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे अचनचेत निरीक्षण पिछों सफाई विच उणताईयां करके मोगा दे नगर निगम कमिश्नर नूं कारण दसो नोटिस जारी। गुरदासपुर दे सठियाली हैड वर्कस नेड़े अपर बारी दुआब नहर विच बीते दिनी पए 100 फुट दे पाड़ नूं पूरन दा काम अज वी जारी। विभाग वल्लों काम छेती पूरा होण दी उम्मीद। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते 26 जून तक गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होण बारे येलो अलर्ट जारी। आते भारतीय निशानेबाजा ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप विच आज 2 चांदी दे अते 1 कांसी दे तमगे समेत 3 होर तमगे जीते ने। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश है शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे डॉक्टर योगेश गर्ग दा गाया राग रागेश्वरी। एना दे नाल तबले ते संगती कर रहे ने हरसिमरन सिंह ते हारमोनियम ते साथ दे रहे ने राकेश कुमार।

सरगम दा अगला नगमा फिल्म दिले नादान तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दियाँ गीत दे बोल नक्श लायलपुरी दे तर्ज खयाम दी।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा

0: भी नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल जी, सानू सार गया विसर गया आमा विकेड़े फासे जाइए सजना। गीत जगह रहे सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ के वे प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। सौगात और मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्ले तुहाडे नाल आ चुके हैं। सो साडा नंबर है जी 0181 2342 171, यानी कि 0182342171। सो यही नंबर डायल करके तुसी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो ते कर सकते हो जी अपने पसंदीदा गीतों दी फरमाइशां दे नाल गल्लां बातां। सो पहले कॉलर दोस्त भी आ गए ने जी। हैलो
1: हैलो,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: सर जी नमस्कार जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: सर जी मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो बोल रहा जी।
0: हाँ जी जनकराज जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: कृपा जी आप जी,
0: चलो वधिया जी वधिया। बिल्कुल जी, कृपा बनी रहनी चाहिए है। ते पहली कॉल लग गई, फिर अज किदां ट्राई कीता, किन्नी क वारी लाया नंबर नाल ही लग गया? अच्छा, तीन वारी लाया तो लग गया। चलो बहुत वधिया गल है। ते केड़े गीत दी फरमाइश लेके जुड़े हो? क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं थोड़ी फरमाइश ते गीत प्ले करन जा रहा हूं। कॉलकंदरी बहुत शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर, बहुत-बहुत
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, साढ़े वट्सएप नंबर पर भी लगातार दोस्तों के मैसेज जोड़े ने पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं जी, सब तो पहला मैसेज साढ़े तक कि पहुँचे। सो सब तो पहला मैसेज जोड़ा साढ़े तक पहुँचे है जी, वो है साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता जी वालों। कहते हैं जी, खुशनुमा महफिल सजी है। बिल्कुल जी, सज गई है तो सजी रहेगी लगातार रात 1 बजे तक, तो तुम भी नाल बने रहना, साथ देना। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, कृष्णा पार्क, कृष्णा पार्क दिल्ली तो भेजा है सुखविंदर सिंह जोड़ा जी ने। इन्ह के नाल जी सी टी दीवाना जी, और इन्होंने एक गीत की फरमाइश की। ये फरमाइश असं कुछ समय के बाद पूरी करांगे। सो इस दे नाल ही एक मैसेज होर पहुँचा है जी। ये मैसेज साढ़े को आया है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवां शहर तो भेजा है सुरेंद्र संधु जी ने। इन्ह के नाल ने अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रीतिशा संधु, मैक्स। तो आओ जी फिर इन्होंने दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

0: सो बिल्कुल जी, एक बड़ा ही प्यारा जहा गीत तो मेरा कला कला प्यार तुम इंजॉय कर रहे थे महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ से बेहतर प्रोग्राम चल रहे जी। सो गात मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्ले थोड़े नाल बनया हुआ। साडा नंबर है जी 0181 2342 171, यानी कि 0181 2342 171 ये साडा नंबर है जी। इस नंबर के राही तुम डायल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो अपने दोस्त अरुण गल्लां बातां के नाल अपने गीतों दी फरमाइशां। सो इस तो अलावा सानू वट्सएप मैसेज भी कर सकते हो जी। साडा वट्सएप नंबर है 94-655-36-077, यानी कि 9465-36077। सो मैसेजेस भी लगातार साढ़े तक पहुँच रहे हैं जी और कॉल भी अगली आ गई है जी, देखते हैं कौन आए ने। हेलो,
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुखात विच।
1: शुक्रिया वीर जी, शुक्रिया। सुखबीर सिंह शाह जी बोलते हैं।
0: हाँ जी सुखबीर जी, की हाल चाल ने थोड़े?
1: बिलकुल
0: प्यार बने रहना चाहिए। कहते प्यार जी जिंदगी है ना, एक दूजे साथ प्यार ए बंदे की लाइफ लंबी हो जाती। वैसे भी
1: जलंधर
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़े प्यार सदका ही असी हाँ। तो किहड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो?
1: कंथक देव जी का दादा सर जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करना चाह रहा, कॉल करने लई बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया वीर जी, ओके,
0: थैंक यू जी। सो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं जी, आओ देखते हैं किहड़े-किहड़े दोस्तों के मैसेज पहुँच चुके हैं। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर तो भेजा है सैयद मसरूर साहब ने। इन्हों के नाल है जी शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, तो सदाम, तो अदीप। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, मैसेज देखते कितों आया है। यह मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी मजनू का टीला तो भेजा है कमल बालूजा जी ने। इन्हों के नाल ने मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकंक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक, तो ईशिता अरोड़ा। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को सरहिंदी बाजार पटियाला तो भेजा है प्रेम कुमार रहेजा जी ने। इन्हों के नाल कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योत, सजनी। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जिहा गीत।

लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो पे जय ताज मोहम्मद अंसारी साहब ने इन्हें नाले जी गुलाम साहब राही ते महराज चाहां। ते आओ जी फिर इन्हें फरमाइश ते सुनते हैं पैरा जा की थर भजनवान साहब के वास्ते।

0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो ते कितों गल कर रहे हो?
1: मनजीत कौर बोल रही हां दिल्ली तो।
0: हाँ जी मनजीत जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: हां जी ठीक है, तुसी सुनाओ अपना।
0: जी साढ़े बहुत वधिया ने जी। अज तुहाडी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ढिली लग रही, ठीक ठाक हो?
1: बस थोड़ा एवं ही चल रहा अजकल,
0: अच्छा,
1: अजकल कुछ ढिला ही चल रहा।
0: चलो गर्मी भी बहुत है जी, अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्मी इस वेले हैगी
1: हाँ
0: है।
1: बस कुछ कई दिन हो गए ना एवं ही चल रही, शरीर ठीक नहीं है।
0: चलो कोई नहीं जी,
1: पर
0: जल्दी
1: फिर
0: ठीक।
1: भी कॉल करने को अभी पीछे नहीं
0: नहीं नहीं
1: हटते।
0: बहुत शुक्रिया जी थोड़ा, तो चलो जल्दी ठीक भी होंगे तुसी, तुम एन ओके हो जाएगा सब कुछ। सो केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो अज? कड़ा
1: आज ना बब्बू मान का गाना सुना दूंगा,
0: गीत सुनोगे?
1: मैनू पता ही नहीं चल रहा सब प्यार हो
0: चलो बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं जी।
1: ठीक है जी,
0: थैंक यू
1: प्यार
0: जी।
1: तो सानू है ही है, ताही फिर अभी
0: बिल्कुल जी
1: बैठे
0: बिल्कुल
1: रहने हैं रात
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: तक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये प्यार
1: चलो
0: बने
1: कॉल
0: रहना चाहिए जी
1: करते
0: इसी
1: हैं,
0: तरह।
1: चलो तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
0: मैं कह जी इसी तरह ही प्यार भी बने रहना चाहिए।
1: जी
0: चलो कॉल करने के लिए
1: ओके
0: बहुत
1: थैंक
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: यू।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी व्हाट्सएप मैसेजेस दे वाले भी मार लेते हैं जी। मैसेजेस साडा नंबर है 94655-3607, यानी कि 9465-36077, और इस नंबर के उपर मैसेजेस जड़े ने दोस्तों के आ चुके हैं। आओ देखते हैं किड़े किड़े दोस्तों के मैसेज आए हैं। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, नज़दीक बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो भेजा है रमन वर्मा जी ने। इन्हों के नाल ने जी अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा, सिद्धक वर्मा, प्रियांशी वर्मा ते आल वर्मा फैमिली। सो इस मैसेज के नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। ये मैसेज देखते हैं कितों आया है। ये मैसेज पहुँचा है साढ़े कोल पटेल नगर मलोट तो भेजा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी ने। इन्हों के नाल गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया ते गुड्डू। एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी, ये मैसेज भी देखते हैं कितों आया। सो ये मैसेज साढ़े को आया है जी, पिंड वड़िंगखेड़ा पंजाब तो भेजा है मिंटू टॉमस जी ने। इन्हों के नाल जी पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश तो सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

बिल्कुल जी नारू से हीरे मेरी गीत जगह रही मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से बीते प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात। और साढ़ा व्हाट्सएप नंबर 9465536077 यानी कि 9465536077। इस वेले पूरा ही बिजी है जी, बहुत सारे मैसेजेस और लगातार दोस्तों के जोड़े साढ़े तक पहुँच रहे हैं। और अगला मैसेज साढ़े को पहुँचा है जी सूरज चौहान होना दा, तहसील त्योग डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश तो। और गुरदास मान साहब की आवाज़ से इन्होंने गीत की फरमाइश की है, तो फिर आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे जे गीत के नाल।

सो बिल्कुल जी, टप्पे एंजॉय कर रहे थे सुरजीत पिंद्र के साथ, ये वास्तविक थे प्रोग्राम जो घात चल रहे जी। और अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, भेजा है मुकेश बत्ता जी ने। इन्हों के नाल ने नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। और शरीमान साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे जे गीत के।

सो बिल्कुल जी, नौकर की थे जो कह रहे हैं शेरीमान साहब की आवाज़ से बीते प्रोग्राम चला जी। सो गात ते अगला मैसेज साढ़े ते पहुंचा है नीदरलैंड तो, भेजा है रविंद्र पाठक जी ने और इन्होंने नाल जी आशा पाठक जी। बड़ा ही प्यारा जहा मैसेज हर बार की तरह इन्होंने भेजे है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी प्यारे जहे मैसेज के लिए। और परमात्मा थानू भी चढ़ती कला के रखे जी। और इन्होंने कहने जी अपनी पसंद का गीत सुना दे, तो बिल्कुल ठीक है जी। अज अपनी पसंद का गीत असं प्ले कर जा रहे हैं। सो कॉल मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा कीता केवड़ चीरा। राग आसा विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उचारिया गया ये फरमान इस बात नू स्पष्ट करता है कि ओ प्रभु सब तो वड्डा है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उसका कितना वड्डा विस्तार है इस बाबत भी कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। जो इतना वड्डा है, सृष्टि दा रचायता ते पालक है, ताते फिर उस अग्गे सीस चुकाना ही बनता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जप बाणी दी 28वीं पौड़ी तो लैके 31वीं पौड़ी तक बयान करते ने कि उस प्रभु नू नमस्कार है, उसनू सदा नमस्कार है। आदेश तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। सरवण करदिया जप बाणी विचों इना पौड़ियां दा गायन कीता है भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आदेश तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जब बाणी विचों इन्हां पौड़ियां दा गायन कीता सी भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने, ओ सर्प कला समर्थ प्रभु दे अग्गे हर कोई नतमस्तक है। भावें ओ कोई साधारण जीव है जां फिर वड्डे तो वड्डा राजा भी है, क्योंकि ओ सृष्टि दा रचयिता आप मुक्ति दाता है, कुल सृष्टि नूं तारन वाला है। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस शब्द दा।

0: नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर अलंकार सिंह होरा वालों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सरबजीत सिंह।
1: ये पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सरताज पंचम गुरदेव धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी हुणां दी मुबारक रसना तो उच्चारण कीता होया कानड़ा राग अंदर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंग 1301 उपर सुभायमान है। सतगुरु पातशाह आप उस प्रभु दे बेअंत रंगां नूं वेख के उस तों बलिहार जांदे सीस नवाउंदे हन। उस परमेश्वर अगे जो गुरु पातशाह आप हर तरह दे बंधना तो निरलेप मुक्त हन और मैनू मुक्त करन दी समर्था रखदे हन करन वाले हन, ऐसे गुरु दाता पातशाह तो सदा ही कुर्बान जाना चाहिए।

ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो मां ताता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बा प्रुरंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सह

अंतन पावत देव सबे मनो इंद्र महासेव जोग करी फुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल।

कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हुवै सिफत खसम दी नूरे अर सह कुर सह।

0: कर जहन रसे कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठतनी भी नानका गुण चंगियाइया सब को नेवे आपको पर को नेवे ना को धर दराज तोलिए निवे सगोरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मिर गाहे शीस निवाया क्या थी है जा रिदा कसुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक से।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

करे ता सहकार कराए सी सौ सेवक सेवा करे तुसनु हुकम बनाए सी हुकम मना होवे प्रमाण ता कसमे का मैल पाए सी कसमे पावे सो करे मन होच दासो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी।

तन फिटै फेड करें मन जूते चुरी परहेन। कहो नानक सच थई सच होवे सच पाइए पड़ चुते अंदर।